नाम ले जा रो तने ने तिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा तुबरी शिवा ठे आलवी तु या प्रमी पिखा तनी अहो ना लावी चौमा जावी जैसे मुमा अस्वां कोने बाबी Hello, and you be me, but the Amu Hello, and you be me, but the Amu Maru Makanai me. The Yard is the